मेरी मेरी धार बंधन बंधिया अपने आले दुआले आप ही बंधन फैला रखे मैं मेरी दे चक्कर विच ए मेरा है ओ मेरा है मैं फलाने दा फलाना मेरा है इस पकड़ दे विच नाम नाल मेर पैदा नहीं की जा सकी वाहिगुरु नाल मेर नहीं पैदा की जा सकी ते फिर की होया नरक सुरग अवतार माया धंधिया माया दे धंधिया च फसिया होया जमन मरना बनिया रहा नरकां सुरगां दा चक्कर चलदा रहा साहब कहंदे ने सोच सोच के विचार विचार के सोध सोध के अखीर नतीजा ये कढ़िया है सोध तो सोध तो सोध तत विचारिया नाम बिना सुख ना है सर पर हारिया अखीर बंदा जिंदगी दी बाजी हार जाएगा नाम तो बिना सुखी ना हो सकेगा बहुत वड्डा सुख है हुण गल कोई चखण नूं तैयार ना होवे कोई सुख लैण नूं तैयार ना होवे एक साखी कहंदे ने कहंदे ने कोई बंदा सी लकड़ा कटन जांदा है लकड़ा दी पंड चुकदा है चुके लै जांदा है घर जाके उस लकड़ा दी पंड नूं वेचदा है कोई दो टके उसदे वट के रोटी चल जांदी राह विच इक महात्मा भी रोज मिलदे ने कदे आउंदे आ कदे जांदे आ मिल पैंदे ने यह सिर झुका के उहनां दा आदर भी कर छड़दा एक दिन महात्मा ने राह रोक लिया कहण लगे क्यों प्यारे आ यह सारी उम्र लकड़ा ही ढोंदा रहेगा कह लगा जी होर की करा कह लगे नगर चो निकलिया जंगल में आया लकड़ा ले गया वेच लिया रोटी चला ली चल जाती है कहंदा जी कोई नहीं चल कह लगे फिर तू होर उद्यम कर लकड़ा ही ढोंदा रहेगा कह लगा जी होर की करा दसो साहब ओ महात्मा कहन लगे संत कहन लगे इंज कर इस जंगल दे जरा अगले हिस्से च गहरे हिस्से च जरा अगले पासे जावेगा ना उथे तेनू मिट्टी च कुछ हरा हरा नजर आवेगा जिथे मिट्टी विच हरा हरा अंश वेखे ना उस मिट्टी विच चांदी दा अंश है उस मिट्टी नूं छान के चांदी कढ लै तेरे दुख दूर हो जाणगे तेरी भुख दूर हो जाएगी हैरान हो गया अखां चमक पईआं अज लकड़ां नहीं कटियां लकड़ां कटण दी बजाय गहरे जंगल दे अंदर चला गया मिट्टी दी पछाण करदा करदा उस टिकाणे ते पहुंच गया जिथे वाकई मिट्टी दे विच कुछ हरा हरा सी कुछ नीली नीली भा पैंदी सी उस मिट्टी नूं पटिया पछाणिआ चांदी जापी चोखी सारी मिट्टी कट्ठी करके घर लै आया तोता सेक दिता गालिया उसनू चांदी दे कण नजर आए चांदी मिल गई सारा घर खुशियां नाल भर गया चांदी लैके बाजार गया पैसे वटे घर दी भुख दूर हो गई रोज हुण लकड़ा लैण नहीं जांदा चांदी लैण जांदा अखीर जानवर रख लिया ओदे उत्ते भार लद के उस मिट्टी दा लियांदा चांदी दा साहूकार बन गया एक दिन मिट्टी लैके आ रहा महात्मा फिर मिल पाए कह लगे क्यों सजना मिट्टी ढोई जानी है कह लगा जी मिट्टी थोड़ा है चांदी इस मिट्टी तो बहुत सारी चांदी है कह लगे फिर भी मिट्टी है ना भावे चांदी है तो मिट्टी ना ते जे मिट्टी ढोनी है तेज कर थोड़ी जी कोशिश होर कर थोड़ा जा जतन होर कर जरा तू अगे जावे पहाड़ दियां उन्हां निवाणा दे विच पहाड़ दी वादी दे विच जरा कोई खेचल करके जावे तो उथे सोने वाली मिट्टी भी है तेनू जरा दूर जाना पेगा थोड़ा चढ़ाई लहाई करनी पेगी सोने वाली मिट्टी भी है कह लगा जी पहला क्यों नहीं दसिया कह लगे हुण जो दस दिता हुण चला जा चांदी वाला पासा लंघ गया चांदी वाली थां ते नहीं खलोता सोने वाली थां ते जाट गया उथे मिट्टी पट्टी मिट्टी विचों सोना चलकदा है लै आया गालिया सोना कढ़िया हुण सोने का व्यापारी हो गया सराफ हो गया बहुत वड्डा व्यापारी बन गया पैसा ही पैसा है धन नाल घर भर गया फिर एक दिन मिल पाए कहन लगे मिट्टी ढोई जानी है कहन लगा मिट्टी ता ना कहो सोना कढ़न वाली चीज नूं मिट्टी ता ना कहो कहन लगे फिर भी मिट्टी है कहन लगा फिर हुण होर की करा कहन लगे होर अगे जा आ दो चार पहाड़ियां लंघ जावे ना ते अगे नदी दे किनारे दे उपर पत्थरां दी पछाण तैनू मैं दस देना उन्हां पत्थरां दे विच जरा कोई गौर नाल वेखेगा तैनू हीरे भी मिल जाणगे कहिंदा तुसां वेखे ने कहिण लगा वेखे ने तां ही दस्सां थोड़ा जिहा जतन कर टिकाणा दस दित्ता अज सोने वाला थां भी लंघ गई उत्तों दी लंघ गई हीरियां वाली थां ते जा पहुंचिया छाण छाण के रेता छाण छाण के मिट्टी डोल डोल के पत्थरां नूं हीरे कट्ठे कीते ने अज उस जानवर दे उत्ते आप चढ़ के आया शान नाल बोझे च हीरे पाए हुए खीसा भरिया हीरिया के नाल भार थोड़ा है।

पादशाह तो सवाल पीते है। पादशाह तुसी अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज क्यों नहीं कीती? कहन लगे फर्क है, उथे रब दी कथा है, इथे मैं अपनी कथा कह बैठा, इसलिए अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं की। पातशाह तुहानू की लोड़ पै गई अपनी कथा सुनाण दी? कहन लगे लोड़ सी, जिस वेले तुलसीदास किसे प्यार विच आया, श्री राम नू भगवान राम कह बैठा, सूरदास बहुत ही सत्कार विच आ गया ते कृष्ण नू भगवान बना बैठा, कोई ऐसा सिख उठ के मैनू भगवान ना कह बैठे, वाहगुरु ना कह बैठे, इसलिए मैनू अपनी कथा कहनी पै रही। पर जे पातशाह तुहाडे गुणा नू तुहाडी महिमा नू वेख के कोई कह बैठे भई तू ते रब इको ही हो, तू ही रब है, ते फिर की होवेगा? हजूर ने वचन कीता

की पावन पवित्र शब्द साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दा उच्चारण कीता। जिस शब्द अंदर सतगुरु गुरु नानक पातशाह सानू कलयुग जीवां नूं उपदेश देंदे होए एक गल समझांदे, असी चंगे क्यों नहीं। कदी किसे मनुख ने अपने आप नूं भी माड़ा आखे, ओ ते कहिंदा मेरे वर्गा चंगा है ही कोई नहीं, जिन्ना मैं सियाणा, जिन्ना मैं सुगड़, जिन्ना मैं गुणवान, जिन्ना मैं ज्ञानी, मेरे वर्गा कोई संसार विच नहीं। पर साहिब कहिंदे ने भाई चंगा किसे चंगयाई नाल हुंदा है, शुभ गुणा दे नाल हुंदा है। अपने आप चंगे बन बहना उसनू चंगा नहीं आखदे। इधर पट बाणी विच कहिंदे ने चंगे किवें हो सकने आ जे साडे अंदर मालक दी समझ मुताबक गुण होण। जे हे परमात्मा तेरे शुभ गुण साडे अंदर एक भी नहीं ते असी अपने आप नूं चंगे किवें खवा सकने। पट तां ऐसा कहिंदे ने हम अवगुण भरे एक गुण नाही। हे मेरे पातशाह, मैं ते अवगुणा दा भरिया होया, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, क्योंकि चंगा ते मैं गुण नाल होना है ना। पर जे मेरे अंदर एक भी गुण ना होवे ते मैं चंगा किवें हो सकदा हां।

सब तो वड्डा अवगुण की है कि मैं अमृत नूं छड़ के बिख खाई जा रहा। हे परमात्मा, जो तू अमृत दी दार दित्ती मैं वह भी हासिल नहीं कीती, ते केवल बिख चखी जा रहा। एदू वड्डा होर अवगुण केड़ा हो सकता है? फिर कहिंदे ने माया मोह परम पै भुले, माया दे मोह विच पै के परमा विच मैं भुलिया फिरदा हां। माया मोह परम पै भुले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। सुत कहिंदे ने पुत्र, दारा कहिंदे ने इस्त्री। हे मेरे मालिक, मैं तेरे नालों प्रीत तोड़ के, तेरे नालों प्यार छड़ के, मैं अपना प्यार अपने पुत्र तियां नाल ते घरवालियां नाल लाया होए। फिर कहिंदे नहीं

कंचन नारी में जियो लोबत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर वो गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जरा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना ते नारी कहिंदे ने इस्त्री। बस इना विषय विकारां विच पै के, मोह दे जंजाल विच फस के, माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा सी तेनू पलाया होया।

ए माधो माया दे मालिक, माया दे साई, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे। सतसंग तो ध्यान देन हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे आ, सतगुरु कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप।

करेंगे। हम पापी तुम पाप खंडन। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं? क्योंकि असी पाप करने वाले हैं, तुसी पापां दा खंडन नाश करने वाले किवें चंगे हो? हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना। निको ठाकर दे।

हे रमैया मैं तेरा बालक हां, काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकता है, भगत ही कह सकता है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा की याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल ए कह सके कि मैं तेरा बालक हां, ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे को अवगुण बख्शा लेने। इसलिए भाई आओ आप उस मालक अगे इस तरह बेनती करिए

हे गोविंद असी किहो जाए अपराधी हां, असी किहो जाए हां, आप किहो जाए हो। जे ता समुंद

अरविंद, हम ऐसे अपराधी, ऐसे अपराधी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने कि हे मेरे मालिक असी किहो जिहे अपराधी आ, साडे अंदर किन्ने कु औगण ने। भाई साहब जी ने इस पौड़ी अंदर 22 औगणा का जिक्र किया है। कहंदे 22 औगण सब तो वड्डे मेरे विच ने। साध सिंह ध्यान करना,

अरदास ने अर्ज करनी है, अरदास करनी। अरदास दा मकसद एहो ही है कि आउन वाला जो समा है मनुख उस तो जानू नहीं कि आउन वाले समय दे विच की हो सकता है, सुख मिल सकता है या दुख मिल सकता है, मगर जो परमेश्वर है, जो साडा साईं है, साडा खसम है, उसनू ज्ञान है, वो जानदा है कि आउन वाला समा कैसा है। ते मनुख उस शक्तिमान परमात्मा दे चरना कमला विच ए बेनती करदा है कि है मेरे साहिब, मेरा आउन वाला जो समा है उस दे विच मैनू सुख प्राप्त हों, मैं इसे करके तेरे चरना कमला विच अरदास करदा। ते साहिब फरमाउंदे हन कि ए गुरसिख, तू उस दी रहमत दा पात्र बन, क्यों जो ओ तेरे ते मेहर कर देवे ते तेरे सारे कारज रास हो जाने। मेहर करे जिस मेहरवान ता कारज आवे रास।

अमृत की है, अमृत है परमेश्वर दा नाम, अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तैयार करके सिखा न पिया ते खालसा पंथ साजे। पर इस अमृत दी कहानी बड़ी लम्मी, चार युग होए ने, सात युग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। हर युग विच अमृत पीता गया, पर अमृत पीण दा टंग वखरा, अमृत लभण दा टंग वखरा। एक गल होर, कुछ लोकां अमृत पीता पहलियां युगां विच अमर होण वास्ते कि सानू मौत ना आवे, कोई दुख लागे ना आवे, अपने वास्ते अमृत पीता अपने भले वास्ते। पर जेड़ा अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखा नूं पियाया, ओ अमृत आपा वारन वास्ते, जुलम खत्म करन वास्ते, मजलूमा दी रखिया करन वास्ते। तो आओ विचार करिए पहला सतयुग बारे के सतयुग विच ए अमृत किस तरह मिलिया ते किस तरह पीता गया। पहला हिंदू मत अनुसार कथा, उस तो बाद गुरु

एक किस्सा तरती तेन से पानी मन्या गया समुंदर बड़ा वटे एक वरी देवतिया ने विचार की थी देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड़े समुंदर विचों चीजा लबनिया ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा से सलाह की थी सारे क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदों मिलेगा जदों आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहिदी रस्सा चाहिदा पर समुंदर अथाह है एडे वड्डे समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी ता सारियां देवतियां सलाह करके मंदराचल पर्वत नू मदानी बनाया शेष नाग नू रस्सा बनाया शेष नाग नू उस पर्वत दे द्वाले लपेटिया गया एक पासियों उस सप नू देवतिया ने फड़िया एक पासियों दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंदर आदिक देवते ने दूसरे पास से दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले एक वरी साप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया एक वरी दैंता ने साप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया ते ओ जड़ा पर्वत सी उस समुंदर दे विच इस तरह घूमन लग पिया जिस तरह चाटी दे विच मदानी घूमदी देवते उस शेष नाग नू अपने वाल खिचदे ने दैंत अपने वाल खिचदे ने ते पर्वत जिहड़ा है उस समुंदर दे विच घूम रहे है बड़ियां भयानक लहरां उठियां जदों लहरां उठियां ते सारियां तू पहला जहर निकलिया जहर बड़ा खतरनाक सी धरती ते सुट देने ता नुकसान बड़ा हुंदा है ओ जहर शिवजी भगवान नू पीण वास्ते बेनती कीती गई ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया उन्ना दे गले दा रंग नीला पै गया इस करके शिवजी भगवान नू लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करदे जहर तो बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां जिन्ना विच काम तीन गऊ पारजात दरखत लक्ष्मी अनेकां वस्तुआं निकलियां लक्ष्मी नू विष्णु भगवान जी ने अपना लिया पारजात दरखत नू इंद्र देवता अपने स्वर्गां विच लै गया जिते अनेकां चीजां निकलियां उथे अमृत दा कड़ा भी निकलिया पर ए अमृत दा कड़ा दैंतां दे हाथ लग गया।

द्वापर युग बीत गया, कलयुग आया, धन गुरु नानक साहब का अवतार होया। आओ हुण गुरमत अनुसार अमृत बारे विचार कर दें, क्योंकि हर पक्ष देख के फिर चलना चाहिए ता आनंद और समझ पूरी आंदी। धन गुरु नानक साहब का अवतार होया सुल्तानपुर लोधी। धन गुरु नानक साहब जी ने जदों रहना शुरू किया रोज अमृत वेले नदी ते इशनान करन जांदे ने, अज भी इशनान करन गए। सेवक खलोता है देख रहे है, अचानक इशनान करदे हैं। धन गुरु नानक साहब ने पानी दे विच ऐसी झुब्बी लाई कि दोबारा उत्ते नहीं आए। सारे सुल्तानपुर लोधी खबर फैल गई कि गुरु नानक डुब गए, पर गुरु नानक साहब दे वड्डे भैन जी

कीर्तन करने वाला। तन गुरु नानक साहब कहंदे ने हौं ढाडी विकार, मैं उस परमेश्वर दा ढाडी हां, उहदा कीर्तन करने वाला, पर मैं वेला सी। कारे कहंदे ने कम उस पर

सुत कंदे ने पुत्र तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख नु कहंदे ने ऐ अकाल पुरख तुसा कहा सी मैं अपना सुत दोहे निवाजा पंथ प्राचुर करबे को साजा ऐ दुष्ट दमन। तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पहले जन्म का नाम दुष्ट दमन सी। ऐ दुष्ट दमन मैं तैनू अपना पुत्र बना के इस दुनिया ते भेज रहे हैं एक नवा पंथ चलाने वास्ते। ऐ अकाल पुरख हुण मैनू दस मैं कहो जी शकल कहो जी सूरत इंसान नूं दिया कहो जिहा मैं पंथ।

आनंदपुर साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दा दरबार सजे है। एक पासे माइया बैठिया ने, एक पासे पुरुष बैठे ने। सिंघासन ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विराजमान ने। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होए, कीर्तन हो रहे। अचानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने अखां बंद कीतियां सन, अखां खोलियां। एक पहरेदार सिख नूं कोल बुलाया ते कहन लगे, सिखा कुछ दूर दरखत है, उस दरखत दे थले एक सिख बैठा रो रहे है, जाओ उसनू प्यार नाल साडे को ले। पहरेदार चला गया। दूर दरखत थले सचमुच एक सिख बैठा रो रहे है, अखां बंद नहीं, हाथ जुड़े हुए ने, पर बंद अखां विचों अथरू पै गिरदे ने। ते नाले कह रहे है, ऐ सच्चे पातशाह, मैं की गुनाह कीता है, की पाप कीता है, काबुल तो आया, तेरे दरबार पहुंच गया, पर तेरे दर्शन करन दा मैनू हुक्म नहीं। पहरेदार सिख पहला तो सुनदा रहा, फिर मोढ़ा फड़ के हिलाया ते नाले कहा, सिखा तू कोई पाप नहीं कीता, तेनू ते आप कलगिया वाले ने याद कीता। उससे कुठिया अखां पूंजदा होया पहरेदार दे नाल तुर पिया। जदों दरबार विच दाखल होण लगा, इत्थे भी इक पहरेदार खलोता सी। उसने कहा, ए काबल वाला सिख दरबार विच नहीं जा सकता। नाल आया पहरेदार कहन लगा, ए दरबार क्यों नहीं जा सकता? तां खलोता पहरेदार कहन लगा, जेड़ा वड्डा मसंद है चेतो, ओदा हुक्म है इस काबल वाले सिख नूं दरबार विच नहीं जान देना। ते सुन के नाल आया पहरेदार कहन लगा, जेड़ा चेतो मसंद दा मालिक है कलगियां वाला, मैनू ओदा हुक्म होया। ए सुन के पहला पहरेदार परां हट गया। सिख दे हाथ जुड़े ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सामने पहुंचे, दर्शन कीते, अखां विचों अथरू वगण लग पए। तीन दिन हो गए सन रोंदे हां, अरदासां करदे हां, गुरु दे दर्शन कीते, अपना सिर चरना ते रख दिता ते कलगीधर पातशाह सिर ते प्यार नाल हाथ फेरदे ने ते नाले बड़े प्यार दे नाल कहन लगे, सिखा काबल तू आए, तीन दिन हो गए ने तैनू रोंदे हां, सानू पता है, सिखा साडे नाल बड़ा प्यार करना, पर साडे वास्ते

बेटा क्यों मंगी, ये ते गुरु दा कौतुक है। कहन लगे सिखा साडे वास्ते बेटा की ल्यांदी। सिख हाथ जोड़ के कहन लगा पातशाह मैं की देन जूगा, सब कुछ आप दे मैं सुनियारा वा। हाथियां दे दंद दा एक कंगन जिदे विच हीरे जड़े हुए सन, मैं आप दे वड़े मसंद चेतो नू ओदू दिता सी जद वो काबल गया सी। दूसरा कंगन जिदे विच हीरे जड़े ने मैं लेके आया सा, वो कंगन मैं चेतू मसंद नू दे दिता, क्योंकि चेतू ने कहा सी कि सिखा तेरे नाल गुरु साहब जी बड़े नाराज ने, तू दरबार विच ना जाई। ए सुन के गुरु साहबा ने अपने दोनों हाथ अगे कर दिते ते नाले कहन लगे सिखा ऐ देख मेरे हाथ ते खाली ने, तेरे कंगन मेरे कोल नहीं आए। सिख ने कहा पातशाह मैं ता चेतो मसंद नू दिते सन, ते चेतो मसंद संगत च बैठा सी, उठ के खड़ा हो गया। कहन लगा पातशाह ए झूठ बोलदा है, ए कंगाल कंगन।

पंडितों की प्रीख्या ले दो लंगर लाए, एक विच मास बनाया, एक लंगर सादा बनाया। साहबा ने कहा जड़ा मास वाला लंगर छकेगा ओनू बहुत ही माया मिलेगी, जड़ा सादा लंगर छकेगा ओनू घट माया मिलेगी। मास खाण दे नाल सोने दियां मोहरां ज्यादा मिलनियां ने, ए सोच के बहुते मास वाले पासे बैठ गए, सादे पासे घट बैठे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिन्हां ने सादा लंगर खादा उन्हां पंडितां नूं चोखी माया दित्ती, ते जिन्हां ने मास वाला लंगर खादा जिन्नी कही सी उन्नी उन्नी माया उन्हां नूं दित्ती। पर इन्हां वल्लों भी मन उदास हो गया कि जिहड़ा आदमी माया बदले अपने धर्म ते पक्का नहीं।

कथा सुनते गुरु साहिब जी विराजमान ने अचानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चेहरे का रंग बदली होया, चेहरे ते कठोरता आ गई, म्यान विच कृपान खिंची ते ललकार के कहा, साध संगत मैनू एक सिर दी लोड़, पहला तां किसे नूं समझ ही ना आई, जदों दोबारा कहा मैनू एक सिर दी लोड़ है, हर पासे सहम छा गया कि ए की हो गया। गुरु साहिब जी अपने सिखां दे सिर मंगण लग पए। तीसरी बारी सिर मंगया।

ते जड़े दूर दूर भज गए सन भजे भी जा रहे ने ते पिछे मुड़ मुड़ के भी देखते जाते ने कोई फड़न दे नहीं आ रहे है। पर पंजवी तो बाद गुरु साहब जी दोबारा नहीं आए जड़े बैठे सन प्यारो भी करते पर समझ नहीं आती कि गुरु साहब जी सिर क्यों मंगते। बड़ी देर हो गई बैठे उड़ीकते पे ने हुण गुरु साहब जी उस तंबू विच बाहर निकले कृपान म्यान विच है चेहरे ते हुण रौनक प्यार है। ਉਹ ਪੰਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਗਾਤਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਤੇੜ ਕਛਹਿਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪੰਜੋ ਜਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੰਦ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਤਾਰੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ सामने सर्वलोह दा बाटा पे है जिद विच पानी पाए विशकार दो तारा खंडा रखे।

होनिक विचार है के गुरु साहबा ने उन पंजा नु नाम दिते दया राम नु दया सिंह सिंह नाम ओदू दिता जदू ओ ना अमृत छके ते जे कोई बगैर अमृत छके सिख परिवार विच जन्म लैके अपने नाम दे नाल सिंह लफज लांदा है ओ सिंह लफज माता पिता दा दिता हो सकदा है गुरु वालों सिंह लफज उदू मिलेगा जदू आपां अमृत छकां गुरु ने किन्नी कृपा की ना समुंदर रिड़कण दी लोड़ है ना अवतार बनन दी ते गुरु नानक वर्गा कोई हो नहीं सकदा कि जिन्हों सचखंड अकाल पुरख बुला के अमृत प्यावे किन्नी कृपा की रहत बैत वाले पांच सिंघां कोल जाओ बेनती करो वो अमृत तैयार करके पाई तुहानू छका देणगे तो जिन्हें अमृत नहीं छके सिख परिवार विच जन्म लैके ओदा जीवन किसे लेखे नहीं ते अमृत जिहड़ा छक लैंदा ओदी कोई जात नहीं अगर एक चमार भी अमृत छक लवे रहत विच रवे ते गुरु साहिब जी कहंदे ने ओ फिर चमार नहीं।

सही महीने च बौरा कौन है, दीवाना कौन है? तो दीवाना जानिए जा साहेब तरे प्यार। अगली तो प्यार ना सुनना, साहब कहंदे ने मंदा।

ना डरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटी, जुल्म नूं देख के कदम पछा ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दिया नीयां नूं पक्कियां कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे सिपाही जांदे ने दिन भर सिंघां नूं टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़ के लै आंदे ने, ते ए जुल्मी सामने खलो के को के मारदा है। आज जेड़े सिंह पकड़ के लियांदे ने ना, इन्हां दे विच एक 18 साल दा नौजवान, बुढ़ी मां दा इको एक सहारा। जदों मां नूं पता लगा मेरे पुत्र नूं पकड़ लिया है, पापी राजा जुल्मी राजा सिंघां ते कहर टांदा है। मां दा दर्द उठिया, रहा ना गया, राजे दे दरबार विच गई। मेरा पुत्र सिंह नहीं, तेरे सिपाही उनू भुलेखे नाल लै आए ने। बई ठीक है, जे तेरा पुत्र कह देवे मैं सिंह नहीं, ते असी उनू छड़ देवांगे। केड़ा है ओ सामने बंधिया होया है। छुपाई लेके आए, असी तेनू छड़ रहे हां, सानू पता लगा है कि तू सिंह नहीं है। अज गुरु दा प्यारा कूक कूक के बोलिया, कौन कहंदा मैं सिंह नहीं, मेरी दस्तार वाल तक, मेरे चेहरे वाल तक तेनू मैं सिंह नहीं लगदा, कौन कहंदा है। ओ सामने तेरी अम्मा खलोती है, वो कहती है नहीं नहीं वो मेरी मां नहीं है। अब तक लो सिखी किन्नी प्यारी है सिख नू, वो मेरी मां नहीं, हो सकता है उदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर वो सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मावां इंज सिदकों डोल दियां नहीं होंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक बारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ते तेनू छड़ देंगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, याद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका, अजे बहुते दिन नहीं होए किमें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नूं सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, याद कर। सिंघां दियां मावां कदों सिदकों डोल दियां ने, ओ ते आख दियां ने जा पुत्रा, अज गोविंद सिंह नूं तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया, इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लकोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तरदे जकारे निकल रहे।

दूसरा रास्ता, दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत। साहब सानू दसते ने किते जातक नू वेख लै, पपीए नू वेख लै, जेड़ा स्वाती बूंद दे पिछे पपी पपी प्या करदे। साहब बाणी विच कहिंदे ने

देश कर देने प्यारे, अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। धन गुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाए। नाम देव वर्गिया नू सतगुरु ने अपने हिरदे नाल ला लिया, अहंकारियां नू पिठ दे दित्ती मुख नहीं लाया। जिना नाम जपया सिमरन कीता, भावे कोई वड्डा है भावे कोई नीवे, लेकिन भाई सिमरन करन वालिया नू, नाम जपन वालिया नू, सेवा करन वालिया नू मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लेंदे ने। हजूर कहिंदे ने मान ना की जाए शरण फरी जाए, हंकार ना कर प्यारे, अभिमान ना कर, गुरु दे चरणा विच उदी शरण विच आ जाए।

शैव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साई है, एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया। पातशाह तू मेरे ते कृपा कर, किड्डी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच्छा।

गुरु नानक दी मोर ला के धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गाव बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साई कितने गुण गायन करें हजूर बाणी विच कहिंदे ने

साहब जी रसना ते इको ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक दे गुणा दा अथाह बयान करदे होए अपने रसना तो कृपा करदे ने ते आंदे ने

भाई गुरु दा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरु दे प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आस लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा विच तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आंदे ने मन।

ऐसी प्रीत कर ले जिवें मछली ने पानी नाल कर ली। चात्रक ने पबिए ने स्वाति बूंद नाल कर ली है। भंवरे का प्यार फुल दे नाल है, सुगंधी नाल है। जेड़ी प्रीत कदी टुटे ना पाछा, मेरे मालका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर, मेरा मन भी तेरे चरणा नाल जुड़े।

बाबा फरीद जी सूफी फकीर जिन्हां दी बाणी साहिब गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह विच साहिब गुरु अर्जन देव महाराज ने दर्ज कीती है। कहिंदे ने जिन्हां नूं अपनियां वड्याईयां दा कोई बंदा नेक काम करे ओहदी संसार वड्याई करदा है, कोई भला काम करे ओहदी वड्याई करदा है, ते जे अपनियां वड्याईयां वल वेख के ओह माण विच आ जावे तां साहिब सच्चे पातशाह दी पवित्र बाणी कहिंदी है भई ओह जिवें मूहले धारमी पैंदा होवे तां नीवें थां तां नकानक भर जांदे ने, उच्चे थां सुके दे सुके ही रह जांदे ने। ऐदां वड्याईयां करन वाला बंदा रब दियां बख्शां ते रहमतां तों ऐदां वांझा रह जांदा है जिवें ओह उच्चे टिब्बे रह जांदे ने।

तारीफ करदे ने। आम चंगे चंगे विद्वान पुरुषा ने गुरु महाराज ने भी धरती नू माता कहा है। धरती बड़ी चंगे सुभा दी है। भाई साहब कहंदे ने इदां दा सुभा बना लै।

0: एक ओंकार
1: गॉड इज ओनली वन
0: सत नाम
1: हिज नेम इज ट्रू
0: कर्ता पुरख
1: ही इज द क्रिएटर
0: निर्भय
1: ही इज विदाउट फियर
0: निर्वैर
1: ही इज इनिमिकल टू नन
0: अकाल मूर्त
1: ही नेवर डाइज
0: अजूनी
1: ही इज बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ
0: सैभंग
1: ही इज सेल्फ इलिमिनेटेड
0: गुरु प्रसाद
1: He is realized by the kindness of the true Guru.
0: Jap.
1: Repeat his name.

अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज।

कोई सुनावे कोई कहे, अगर कोई झूठी कहानी सुनावे लोग उसनु भी सुनते हैं, पर ए ते परमेश्वर दे नाम दी कहानी सच्ची कहानी। और भगत कबीर साहब कह रहे हैं, अंतर ज्योत राम प्रगासा, जिस वेले इंसान दे अंदर नाम दा प्रकाश हो जाए ता फिर ओ इस कहानी नु जान लेंदा है कि परमात्मा दे मेल दी अवस्था की। पर एक गल है, गुरमुख विरले जानी, कोई विरला गुरमुख इस कहानी नु जानदा है।

सिरे राजा राम की कहानी। मैं हुण इस कहानी नूं जान लिया ए सारा संसार परमेश्वर दा बनाया होया है, इसे वास्ते ते मेनू कोई

जान अंजन अंजन कैमरे में सुरमा। गुरु ने ज्ञान का ऐसा सुरमा दिता कि मैनू इस गल की सोझी हो गई, राम नाम तो बगैर जीवन

मैं सिमरन करके ये गल जान ली है कि सिमरन करन दे नाल जिथे दुखां दा नास हुंदा है उथे जग जीवन सिंह जीव समाना जीवन देण वाला जेड़ा परमात्मा है ओ दे नाल जीव दा मिलाप हो जांदा है और ओ इंसान इस कहानी नू जान लैंदा है सिमरन सदका कि सारे विच परमेश्वर दा नूर है ओ दी जो

एक अल्लाह एक वाहेगुरु संसार ते कोई जन वाला है, इस करके ओदे नाल जुड़ो। गुरु इन्हां गल्लां दा ज्ञान करांदा है कि मेल करना है ता परमेश्वर नाल करो। ते सतगुरु जी फरमांदे हन गुरु दा मेल किन्ना जरूरी है।

कितना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे तामी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान नहीं। कई बारी आपां देखदे हां एयर कंडीशन कमरे होंदे ने पर अंदर बैठा इंसान सड़ रहा होंदा है गुस्से दे नाल उहदे मन नूं चैन नहीं होंदा। रोशनी विच इंसान बैठा भी अंधेरे विच होंदा है अंधेरा केड़ा अज्ञान दा। अज्ञान की है अज्ञान ए है कि दूसरे दा हक मैं खावा अपनी सुख वास्ते दूसरे दा हक खाना दूसरे नूं दुख देना ए है अज्ञान। ते ज्ञान की है ज्ञान ए है कि भाई सारे विच परमेश्वर है सारे विच खुदा है वाहेगुरु है जे सारे विच ओ है फिर ते मैं सारे नाल प्यार करांगा। इन्हां गल्लां दी सोझी

हजार सूरज होवे, सौ चंद्रमा होवे, पर जे गुरु नहीं मिलिया तो इस चाननी का क्या फायदा, जे मन दे विच ज्ञान नहीं, मन विच अज्ञान है।

ओने दोनों पेटावा कठिया कर लिया घर आके अधी अधी तेरी कर ली होता कहन लगा ए तेरे वास्ते ठीक नहीं जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू लै जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन दे पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती भावे उन्हें माया तेनू बहुती मेनू थोड़ी दिती पर गए थे आप इकट्ठे से इस करके असी बराबर हिस्सा करना और पैसे तू झगड़ा हो गए और झगड़ा होंदा भी अक्सर देखते हैं देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधरी और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं इस वास्ते नहीं कि उन्होंने कोई सेवा दा चाह बहुत घट होंदे हैं सेवा वाले बहुते ते अपने स्वार्थ वास्ते ए नारा लगांदे ने असां सेवा करनी है नारियां दे नाल सेवा नहीं होंदी सेवा ते मन होंदी हुण मन विच लालच दोनों भरा हैगे ने भगत पर माया पिछे लड़ पे ए लड़ाई इथों तक जा पहुंची वड्डे भरा ने श्राप दे दिता ब्रह्मा तू लालच कीता अगला जन्म तेरा तंदुए दा होवेगा पानी विच रह के पानी दे विच रहन वाले जीवां नूं खा के अपनी लालच वाली ए बिरती पूरी करेगा हुण ब्रह्मा ने भी तप कीता उसनूं भी गुस्सा आया उसने भी श्राप दे दिता कहन लगा ठीक है भरा जे मैं मर जाना तो जिंदा तू भी नहीं रवेगा तेरी भी मौत होवेगी तू जंगल दा मस्त हाथी बनेगा और जंगल विच भटकदा भटकदा एक दिन उस जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा मैं पानी दे विच होवांगा तू पानी पीण आवेगा ते मैं फिर अपनी तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तेनू गोते दे दे के मारांगा और इस गल का बदला लवांगा कि तू मैनू श्राप दिता है ने भगत पर माया विच आ गई और माया ने दोनों नू भगती दे थां तों थले सुट दिता समा आया दोनों दी मौत हुई वड्डा मस्ताथी बन गया और छोटा तंदुआ बन गया इस गल नू गुरबाणी विच भी साहब जी बयान करते हैं राम गुर सरन प्रभु रखवारे ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो कर ऊपर कढ़ निस्तारे गज पत पार उतारे अनेक शब्दां विच इस शाखी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा एक भरा हाथी बनिया एक तंदुआ बनिया और वो समा आया होता जिहड़ा हाथी बनिया सी बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने ए जंगल विच फिरदा फिरांदा गंडका नदी दे डुंबदे आ पहुंचिया गर्मी सी नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी ए ज्यों ज्यों अगे होया इस नूं ठंडा पानी मिले और हौली हौली ए हाथी पानी दे विच काफी अगे तक चला गया और अगे एदा छोटा भरा तंदुए दी जून विच बैठा सी उसने अपनी तारां दे नाल हाथी दे अगले पैर पकड़ ले और हाथी नूं अपने वल खिंचना शुरू कीता पहला ते हाथी ने परवाह ना की थी। पानी पी के वापस मुड़न लगा
ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਤਗੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਇਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕੁਝ ਪਿਛਾਂ ਆਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਤੰਦੂਏ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार किया। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उस नूं होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन अंतरयामी भगवान कृष्ण। दूरों सुदामे नूं देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाईसा फरमान

बड़े ही गहरी विचार विच जा के फरमान कीती है। किसे मित्र नू मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जांदा, किसे मित्र नू मिलना चाहे ते गलवकड़ी विच लिया जांदा है, पर किसे मित्र नू मिलना होवे ते अपना सिंघासन छड़ के भी जाया जा सकता है दूरों देख के। मगर भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड़ के सुदामे वाल नहीं बदे, कहंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वधे सुदामे वाल, और सुदामे दे कोल जाके कहंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा ले रहे हन, और प्रदक्षिणा लेके फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हन, ते पैरी पै के सुदामे गरीब नू अपने गले लगांदे हन। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नू ए मैसेज दे रहे हन भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उना दा बाल सखाई मित्र है, ते बाल सखाई मित्र होने दे नाते ओ दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली वारी देखिया सुदामा मेरे द्वार ते आया है, कहंदे ने दूरों देखिया देखते सुदामे वल रहे हन, पर सुदामे दे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोना ने बचपन दे विच सिखिया लई है। सुदामे दे विच्चों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करदे होए सुदामे वल वधे, ते प्रदक्षिणा लई जिस तरह के अपने गुरु दे ले रहे हन, फिर जिस तरह प्रदक्षिणा लेके पैरी पै गए, और पैरी पै के जदों तक पैरी पए हन उदों तक सुदामे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। ज्यों गुरु दे दर्शन हो गए ते सुदामे नू अपनी गलवकड़ी विच लाया, ते कहंदे ने फिर सुदामे नू लेके सिंघासन वल वधे।

मगर भाई सा भाई गुरदास जी जेड़ी रमज तक पहुंचे कहंदे ने दोनों ही अपने अपने असूल ते कायम। ते ए जानदे होए भगवान कृष्ण कि सुदामा अपनी जबान तो मंगेगा नहीं, ते भगवान कृष्ण ने बड़ा प्यार कीता, परदखना लई पैरी पै के गले लगाया और उदे चरण तो के उसनु अपने सिंघासन ते बिठाया। ते सिंघासन ते बिठान तो बाद उसनु बड़ा प्यार कीता, इतना प्यार कीता। ते प्यार करन तो बाद भगवान कृष्ण कहन लगे, सुदामा बचपन तो हुण जवानी आ गई है, इतनी उम्रा हो गई है, बड़ा चिर होया है मिलिया नू, कोई गुरु दी सेवा दी कथा सुना। गुरु दी सेवा दी कथा दी महानता दर्शा रहे हन कि गुरु दी सेवा दी कथा करन नाल गुरु याद आउंदा है, गुरु याद आउन नाल गुरु दा दस्या होया नाम याद आउंदा है। ते गुरु दा नाम याद आउन नाल जदों नाम दसम द्वार दे विच टिक जांदा है, एकागर चित मन हो जांदा है, भाई सा भाई गुरदास जी फरमान करदे हन, कहंदे हन उस वक्त जितने भी पिछले माड़े कर्म हन ओ सारे दे सारे कटे जांदे हन। भाई साहब फरमान कर रहे हन गुरु दी सेवा दी कथा दी महानता। ते गुरबाणी विच भी स्वामी रामानंद जी महाराज दा एक शब्द है। ए स्वामी रामानंद जी महाराज कबीर साहब दे भी गुरु होए,

चावल बन्ने हुए सन पोटली दे विच ते भगवान कृष्ण ने खोए पुछिया कि मेरी भाभी ने की मेरे वास्ते भेजिया है। भाई साहब इहदा कोई जिक्र नहीं करते। भाई साहब कहिंदे हन जिहड़ा दसम द्वार पहुंच गया उस नूं ते अपनी होश ही कोई नहीं। ओह की भगवान कृष्ण नूं जवाब देवेगा? अंतर ध्यान कर दिता सुदामे नूं। कहिंदे ने भगवान कृष्ण ने उस वक्त जदों उहदे लेखे मेटण दा वक्त आया, क्योंकि गुरु शब्द नाल जोड़िया होया सी, ते पोटली चों इक इक चावल दा दाणा कढ के अपने मुंह विच पांदे गए। एक दाना मुंह विच पाया ते धर्म दे दिता।

कंचन नारी में जियो लोबत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर ओ गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जेड़ा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना, ते नारी कहिंदे ने इस्त्री। बस इन्हां विषय विकारां विच पै के, मोह दे जंजाल विच फस के, माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा सी तेनू भुलाया होया।

चंगे गुणवंता हर हर दयाल। हे मेरे मालिक गुणवंता, तू साडे ते दया कर, कर कृपा बख्श। तुसी करो कृपा साडे अवगुण बख्श के ते सानू अपने चरणा नाल ला लो। कर कृपा बख्श

मना मैं रूप, मेरा सेवा रूपी रूप चंगा नहीं, ना बंके नैना मेरे नैन भी सोने नहीं हन, ना कुल टंग ना कुल चंगी है, ना परमात्मा मेरे कुल कोई टंग है, ना मीठे बैण ना ही मेरे बोल मिठे ने, जेड़े मैं बोल बोल के तेनू अपने बस कर ला, मेरे कुल चंगा गुण कोई भी नहीं है।

ए माधव माया दे मालिक, माया दे साईं, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे। साधु संगत हुण ध्यान देण, हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे आ, सतगुरु कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप।

करेंगे। हम पापी तुम पाप खंडन। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं? क्योंकि असी पाप करने वाले हैं, तुसी पापां दा खंडन नाश करने वाले। किवें चंगे हो गए? हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना। निको ठाकर देसा सामने वालों चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा का भी नाश करी जाना है। हम ऐसे तू ऐसा, आओ अगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथा है, बाणी बड़ी अथा है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन की कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे कते मन च वस जाए जीवन बदल जाता है, जीवन पलट जाता है। हुण सतगुर ख्याल दे

हे रमैया मैं तेरा बालक हां काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकता है, भगत ही कह सकता है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा की याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल ए कह सके कि मैं तेरा बालक हां, ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे को अवगुण बख्शा लेने। इसलिए भाई आओ आप उस मालक अगे इस तरह बेनती करिए

हे गोविंद असी किहो जाए अपराधी हां, असी किहो जाए हां, आप किहो जाए हो। जे ता समुंद

गोविंद हम ऐसे अपराधी, ऐसे अपराधी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने कि हे मेरे मालिक असी किहो जे अपराधी आ, साडे अंदर किन्ने कु औगण ने। भाई साहब जी ने इस पौड़ी अंदर 22 औगणा दा जिक्र कीता है। कहंदे 22 औगण सब तो वड्डे मेरे विच ने। साध संगत ध्यान करना,

अकाल मूर्त अजूनी सहभंग और प्रसाद जब आप सच युगा सच है भी सच नानक कोशी भी सच चक्र के नर वर्ण जात हर पात नहिंजे रूप रंग हरी पी भूकर सत्य है अचल मूर्तन भव प्रकाश अमित पूज के हिंज पूज इंद्र इंद्रान शाहो शाहान गणेज फिर भवन में ही सुर नारासुर नीत नीत मंडन कह तब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समत सतपुरे आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर स्वभाव चिंता लाए हमारी और न सूझ दूजी ठार आर पर तो द्वारी लिखा छोड़े लिखा छूट है हम निर्गुण ले हो बारी सर्वक्षण सदा मीरवाना सबना भी आधारी नानक दास संत पाछा करू राख लियु ए बारी सतगुर हुई दयाल ता श्रद्धा पूरी है सतगुर हुई दयाल ना कम हो चूरिया सतगुर हुई दयाल ता दुख न जानिया सतगुर हुई दयाल ता हर रंग माणिया सतगुर हुई दयाल ता जम का डर के हा सतगुर हुई दयाल ता सद ही सुख दयाल सतगुर हुई दयाल ता नौ निध पाइया

मैं क्या मांगू किच थिर न रहाई। तू दाता है, तेरे कोल सारियां दाता ने, तू दाता दा मुजस्मा है। पर सोचना ता मैं है, पर मैं मंगा की हे मालिक मैनू ओ दात दे।

0: थी वो बाणी, पर मुड़ के ना पढ़ना, नहीं तो काल कोठी जी डके जाओगे।
1: काल कोठड़ी जिस दिन परमात्मा दे नाम दी लो होवे उस लई काल कोठड़ी भी स्वर्ग हुंदी है। भोले जिया हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न को, नानक हुक्मे जय बुझे ता हो मैं
2: शरीर भावे अलग अलग हन, पर जोत ओहा चुगत साई सह आया फेर पलक दी। पर एक गल किसी ने समझी, किसी ने आख्या ए गुरु होर ओ गुरु होर, इस दी मर्यादा कुछ होर, उस गुरु दी मर्यादा कुछ होर। भाई गुरदास साहब जी कहना कहते ने इस भुलेखे विच ना रहियो, जे इस गलत फहमी विच रहा कि जो घर विच सुख साधन होण वह भी मुक जाणगे। गुरु कलगीधर पातशाह कहते ने जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, बिन समझे सिद्ध हाथ न आए। रिधियां सिद्धियां उन्हां दे घरां विचों जांदियां रहियां, जिन्हां ने आख्या ए गुरु कुछ होर ओ गुरु

संग उजियारा जहां पंत तेरा को न सजानू हर का नाम ते नाल पछानू जय महाभयान तपत बोधा तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम।